0: ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दो दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा।

मारीच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौर वर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

0: अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
1: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज़ुद्दीन और गोह स्रिये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से

0: गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थीं विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर

वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

मनीषा फिल्म का ये गाना आपने सुना। वरुण ग्रोवर की बोलती है अनु मलिक की तरसी। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना अरिजीत सिंह की आवाज, फिल्म का नाम है छिछोरी। अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम।

0: और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और चलते चलते आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि विविध भारती सृजन भारती का आयोजन कर रहा है और इस सृजन भारती में क्या होने वाला है। अगर आप मुंबई में हैं तो 21 तारीख की शाम 6:30 बजे जरूर आइए। सारा ब्यौरा इस प्रोमो में है। जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: एतबेळ पर्यंत सुनुथिले कार्यक्रम आकाशवाणी विविध भारती मुंबई केन्द्ररो। किछि समय मध्यरे सुनिपारिबे कार्यक्रम निरामय।
2: बदलाओ अभ्यास बदलाओ।
3: मशीन रे लुगा पकेबा पूर्वरु चेक करी नथिलो कि?
2: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ। एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु।
4: जदि बैंक मना करे तो आरबीआई रो ओम्बड्समन पाखरे अभिजोग करंतु। आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु सतर्क रहंतु।
1: प्रचार करुछु कार्यक्रम निरामय। आजर उपस्थापन रे सुप्रिया पटनायक। कार्यक्रमटिको प्रयोजन करिछंती दिलीप कुमार नायक।

0: योजनार टेलिलर न्याय बंधु न्यायिक साक्षरता और सचेतनता कार्यक्रम सहित संप्रक्त हुंतु आपनो टेलिलर टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.teli-law.in रे न्यायिक सहायता प्राप्त करि परिबे।
1: कौन रीमा घरे सोलर लगे देला?
2: हाँ मधुपा एबे आउ बिजुली बिल पई चिंता
1: नहीं माने
2: हाँ पा सोलार करी देले मास्टर को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जीव
1: सतरे
2: खाली सेती किनु हाँ पा सौर शक्ति व्यवहार करले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
3: आज्ञा हाँ पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। पीएम सूर्य घर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
1: लगे देला?
2: हाँ मधुपा एबे आउ बिजुली बिल पई
1: चिंता नहीं माने
2: हाँ पा सोलार करी देले मास्टर को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जीव
1: सतरे
2: खाली सेती किनु हाँ पा सौर शक्ति व्यवहार करले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
3: आज्ञा हाँ पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। पीएम सूर्य घर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
4: कार्यक्रम आपण माने सुनुचंती प्रचारित होउची 103.4 एफएम माध्यम रे। सूचना मनोरंजनर कार्यक्रम परिसर श्रीक्षेत्र सुरभि को आपण मानक स्वागत करूची। आज उपस्थापन रे मु सुस्मिता। तबे श्रोता बंधु कार्यक्रम को आरंभ करने पूर्व मुंक रखुची आपण अंचल होगा कौनसी भी आनुष्ठानिक कार्यक्रम सूचना जदि साधारण लोक आपचेवाक चाहू था तेज बिना शुल्क जोजोग करें आकाशवाणी पूरी सहित आकाशवाणी पूरी सहित जोजोग करें बिना शुल्क नंबर टी लिखि रखत 9437037892 नंबर में आप फोन माध्यम रे नुहे व्हाट्सएप माध्यम रे लिखित आकार रे मध्य पठाई परिबे कार्ड आकार रे मध्य पठाई परिबे आपनकर के अंचल रे सब के कार्यक्रम अनुष्ठित हेबा को चाहूची। आउ से सब कार्यक्रम रे आपन साधारण श्रोता मानंकर उपस्थिति लडुछंती। श्रोता बंधु आकाशवाणी पुरीर समस्त कार्यक्रम आपन सुनि परचंती न्यूज़ ऑन

0: योजनार टेलिलर न्यायबंधु न्यायिक साक्षरता और सचेतनता कार्यक्रम सहित संप्रक्त हुंतु आपनो टेलिलर टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in रे न्यायिक सहायता प्राप्त करिपारिबे।
1: घरे सोलर लगे देला?
2: हाँ मधुआपा, एबे आउ बिजुली बिल पाई चिंता नहीं।
1: चिंता नहीं माने?
2: हाँ अपा, सोलर करी देले मास्टर को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जीवो।
1: सत्तरे?
2: खाली सेती किनु हाँ अपा, सौर शक्ति व्यवहार कले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
3: आज्ञा हाँ। पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। पीएम सूर्य घर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
4: आकाशर नीलिमा भितरे आज एक पवित्र भवनर आलोक घरे घरे पूजार घ्राण हातरे पूजा थाली मुहरे भक्ति रहस हां आज पवित्र सावित्री अमावस्या ओडिया घरणींकर आस्था भल पाइबा ओ समर्पण एक अनन्य पर्व। श्रोतागण एक दिन में स्त्री मैंने स्वामी मान दीर्घ आयु एवं सुखमय जीवन पर उपवास रखि था। बटवृक्ष तले पूजा सावित्री सत्यवान कहानी श्रवण और निष्ठार सह प्रार्थना यह हेउची एक पवित्र मूल आकर्षण। पुराण कहे अटल संकल्प और प्रति प्रेमर शक्ति सावित्री जमराज पाखर स्वामी सत्यवानंकर जीवन फेराई आनीथिले। सेठारो आजिरो दिनरे नारीर शक्ति सहनशीलता अतुट विश्वासर प्रतीक होय रहिछि। आजि दिन सावित्री अमावस्या केवल एक ओसा नुहे, या होची संपर्क रे सम्मान विश्वास और परस्पर स्नेहर उत्सव। आजिरो एही पवित्र अवसर रे समस्तंकर जीवन सुख शांति समृद्धि भरी जाऊ बोली आमे प्रार्थना करिबा। बट मूळे जल ढाली मनरे भक्ति भरी सावित्रीर प्रेम कहानी आज भी अमर हो रहे। श्रोता बंधु कार्यक्रम परवर्ती ओडिया कथा चित्र गीत शुणा आसतु आम भितर कि अच्छी नमिता अग्रवाल कंठरे।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

मन अड्डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्रानी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गज़ल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपनी रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफ़र पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज़ हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गांव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आईं और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक ख़ास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था। चलिए इस गीत का ही एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था ए आर रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज़ हुई थी, 15 जून 2001 को, और काफ़ी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएँ निभाई थीं सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलिट दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

और ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का, उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाज़ों में था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की आवाज़ शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी, और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज़ हुई थी, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, दस नंबरी,

हेरा फेरी चरस की तो हमने बात की, अभी फकीरा, कालीचरण माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफ़ी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज़ हुई थी, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की, जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज़ हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय, और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

बारूद फिल्म का ये गाना बना आज के मैटिनी शो की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए ₹50 करोड़ का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹30 करोड़ तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है।

0: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन अर्गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

नमस्कार, मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छाँव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफ़र जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो मैं बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं, और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफ़ी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सब ने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसी भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात।

कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिया की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है, वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज़ थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें ज़रूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट। रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही। तो अब कार्यक्रम का ये गाना बताइए, किनके स्वरों में ये गाना है?

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीज़ें और भी जलती थीं, और कई चीज़ों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी, कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्क़त करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफ़ी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नज़र आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं।

जब हम ही अपने अज्ञानपरक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा भाई। कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़ियाँ चहकती, कलियाँ महकती, फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ, ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी।

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज़, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल

मोमबत्ती ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैम्प की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है। इन्होंने लालटेन की बात कही है और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की। फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे, शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूँ तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था, आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है और अब सौर ऊर्जा का ज़माना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन हैं। आज हमें अपना सुरीला सफ़र गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

0: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ है और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो अगर सूरज दादा ना होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, ना पेड़ पौधे होते, ना हम होते, ना पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के ज़माने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज़ रोज़ ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ़ करना पड़ता था, साफ़ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज़्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए।

0: लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: सुहाने सुरीले सफ़र की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक ज़माना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती हैं। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है,

पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगल विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया, मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना,

0: चल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है।
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों

0: कब आता है जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें कब आता है
1: ये कब हुआ ये क्यों हुआ ये क्या हुआ मुझे ये कब हुआ ये क्यों हुआ
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई, पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे, पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहाँ चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें। गाना मंजिल शब्द पर

गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें ये भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी ही नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था।

0: प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों

0: इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: आपसे कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अपन मन कार्यक्रम सुनुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्र रु हमरो परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनी परिबे किसी समय मध्य रे।

0: मैं कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं।

0: करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनांद गांव से नारायण लाल साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: महाराष्ट्र के परभणी जिले में मलसोना गांव के प्रगतिशील किसान श्रीरंग देवबा लाड यानी दादा लाड को वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा लाड जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दादा लाड, आपने खेती के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण के माध्यम

0: माध्यम से जो मिसाल कायम की है वो न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने की सूचना मिली तो उस क्षण आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को आप अपने जीवन, अपने गांव और खेती के सफर के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं?
1: ये तो पहली बार मैंने लातूर में था और दूरदर्शन के सामने बैठा था। जब पहले मैं न्यूज सुनी है तो मेरे पर मेरा भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे बारे में कह रहे कि और कोई दादा लाड है। तो तब तक कहीं सब अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जब फोन आने लगा तो लगा कि वो मेरे बारे में ही है। तो ये मिलने के बाद एक खुशी तो हो गई, इस बारे में खुशी ये बात की है, परंतु जब तक किसी बात को राज मान्यता नहीं मिलती तब तक कोई अंगीकार उसका नहीं करता। तो अभी तक तो कई सालों से कम 25 साल हो गए मैं टेक्निक किसानों के सामने रख रहा हूँ, परंतु जब ऐसे सरकार के माध्यम से वगैरह अखबारों से प्रसार माध्यमों से ये जब तंत्रज्ञान किसानों के पास जाएगा तो उसको लगेगा अरे इसमें कुछ तो भी दम है और इसके कारण ये तंत्र को किसान स्वीकारेगा और ये तंत्र स्वीकारने का जो किसानों का उपज बढ़ जाएंगे उससे मुझे बहुत खुशी होने वाली है। केवल वो ये कारण किसान अभी अपनाता है इसका आनंद मुझे हुआ।
0: दादा लाड, कपास तकनीक विकसित करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली और आप बताएंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
1: एक तो मैं किसान पुत्र हूँ और वो भी ऐसे किसान पुत्रों की जिनके घर का कपास पर पूरा अर्थखाता निर्भर है, यानी कि कपास का पेड़ उनके लिए यानी तुलसी के जैसी श्रद्धा वाला पेड़ है। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इसका उत्पन्न कैसा बढ़े और मैं उसके पास बैठता था और बैठने के बाद एक दिन ऐसा बैठा और उनके ढाली तरफ देखने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नीचे जो मोनोपोडियम जिनको कहती है वो बड़ी मोटी भी है और उसकी ऊंचाई मूल पौधे के बराबर है। तो और दूसरी जो सिम्पोडिया जिनको कहते हैं वो ऊपर से जमीन से समांतर चलती है, वो छोटी वाली भी होती है और दोनों में फर्क ऐसा ये बड़ी और छोटी है। बड़ी में तो डेंडों की संख्या बहुत कम लगती है, संख्या भी कम लगती है, उसका वेट भी बहुत कम होता है और जो सिम्पोडिया रहती है वो बड़ी छोटी वाली होती है, उसको डेंडू की संख्या ज्यादा लगती है और उसका डेंडू का वेट भी अच्छा होता है। तो मैंने ऐसा किया कि यही कैसा आना जाता खेती डेंडू कम देती है और डेंडू का वेट भी कम है और वो सिम्पोडिया का जो डेंडू है वो ज्यादा देती है उसका वेट भी ज्यादा है। और फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ तो भी एक अड़सर है मोनोपोडिया, तो इसको निकालने का मुझे ऐसा लगा कि सब अनाज सिम्पोडिया को दे दिया तो इसमें कपास का वेट बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे मन में लगा चिंतन के बाद। और फिर वो सही या झूठ है ये देखने के पौधे के समझो तीन मोनोपोडिया गई, एक पर 5 डेंडू बोले तो 15 डेंडू कम हो गए, 5 ग्राम बोले तो यानी 70-75 ग्राम का कॉटन कम हो रहा है और दादा लाड टेक्निक से गए तो 40% कपास का उत्पन्न घट जाएगा। और मैं तो कोई शास्त्रज्ञ, मैं किसान हूँ और फिर सुनने वाले किसान तो शास्त्रज्ञ के मानेंगे क्या मेरी मानेंगे, ऐसा एक बड़ा इसमें अड़सर था। और दूसरी बात तो फिर घर के लोगों को घर घर में तो एक बड़ी ढाली काटना, छोटे पार्ट भी कट गए फसल के तो किसान बहुत नाराज होता, वो तीन बड़ी बड़ी ढालियां काटना यानी पति को मान्य होगा तो पत्नी आड़ आती थी, बेटे को मान्य होगा तो पिता आड़ आता था, ऐसा घर में का भी संघर्ष आता था। फिर मैंने उसमें एक किया कि संघर्ष मिटाने की कोशिश की है।
0: दादा लाड, आपकी तकनीक से किसानों को उत्पादन लागत या फिर मुनाफे के स्तर पर क्या क्या लाभ हुआ है उसके बारे में बताएं।
1: मेरे तंत्र से एक हो गया कि पहले किसान 6 क्विंटल कपास लेता था, 6-7 पकड़ के चलो 8 खाद ज्यादा डाले तो अभी 7,000 रुपए क्विंटल भाव पकड़ेंगे तो 8 क्विंटल था यानी 56,000 एक एकड़ में किसान को मिलता था। अभी मेरे टेक्निक से वो चल रहा है तो 15-20 क्विंटल तक जाता है, तो अपन चलेंगे पकड़ेंगे 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक जाता है तो 1,20,000 क्विंटल का 7,000 रुपए पर क्विंटल पकड़ेंगे तो 1,40,000 रुपए, कहाँ 35,000 कहाँ 1,40,000, ये बड़ा अंतर है, ये किसानों का आर्थिक बड़ा लाभ होता है।
0: दादा, कृषि क्षेत्र में नवाचार चाहने वाले युवा किसानों और

0: शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: एक तो नई पीढ़ी खेती में आने में उतनी ये नहीं है, उनको लगन नहीं है खेती की, और ये नहीं आएंगे तो उनका एक है कि खेती नहीं पूर्ति उपज नहीं आता। लेकिन अलग अलग फसल में, केवल कपास का फसल आपके सामने आया है, लेकिन ज्वार का भी मेरा टेक्निक है, गेहूं का भी, ये तंत्र से खेती करने लगे तो उपज बहुत बढ़ती है। और कौन सा युवा नहीं चाहता कि पैसा नहीं मिले, ये तंत्र से खेती करने का जर युवाओं को सिखाया तंत्र और उनको भी पैसा मिलने लगा तो सब युवा भी खेती की तरफ आ जाएंगे। और खेती की मांग यही है कि पढ़े लिखे युवा खेती पे आ जाए, ये खेती की मांग है। और युवाओं को तो ये खातरी हो गई कि भाई इससे उपज अच्छी आती है और पैसा भी मिलता है। और ये तंत्र से, मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ, ये तंत्र से युवा खेती करने लगे तो कोई कमी पड़ेगी नहीं उनको पैसे की।
0: भविष्य में कृषि क्षेत्र में आप किन नए प्रयोगों या फिर योजनाओं पर काम करने का विचार कर रहे हैं?
1: अभी तो कैश क्रॉप पर मैंने काम किया, तो इसमें मुझे, मैंने प्रयोग किया है कर्नाटक में इंडी गांव है, वहां भी मैंने प्रयोग किया, जालना में भी। अभी मुझे मन में कि अनाज के पर जाएंगे, पैसा होना चाहिए, अनाज भी होना चाहिए। तो मराठवाड़े के पकड़े तो ज्वार अनाज है और गेहूं भी अनाज है, तो यानी इधर तो गेहूं तो कभी कभी त्योहार के दिन खाते है, हर दिन का हर ज्वार का है, बकरी का है, तो इसलिए यह अनाज उत्पन्न बढ़ने के लिए मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला है उनका, ज्वार का। मैंने बताया कि अभी ज्वार का उत्पन्न है किसान 6-7 क्विंटल और 400 कड़ भी लेता है।
0: दादा लाड जी, आपने अपने अनुभवों और खेती में किए गए नवाचारों के बारे में हमारे साथ बहुत सी बातें साझा की और प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि परभणी जिले या आपके गांव मलसोना और हम कह सकते हैं कि देश भर के किसानों के लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

3:20 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और जी शनिवार की दोपहरी है और बहुत गर्म है मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी स्टूडियो आई हूँ तो रास्ते को महसूस करती हुई आई हूँ। कोशिश कीजिए कि आप भी अगर बाहर निकलने को हैं तो पानी की बोतल और छतरी या टोपी कैप कुछ भी आप अपने साथ रखिए। गर्मी बहुत है लेकिन हमारी हिम्मत भी कुछ कम नहीं है। स्वागत आप सभी का एक बार फिर मन भावन प्रोग्राम में। शनिवार का दिन है, फुर्सत है आपके पास, अपनी पसंद का गीत हम तक पहुंचाइए। हम बड़े ही प्यार से आपके किसी अपने तक उस गीत को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। fmgoldairdelhi@gmail.com ये है जी पता जिस पर आपने अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है। एक बार दोबारा सुन लें, fmgoldairdelhi@gmail.com। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। और जैसे कि हर बार की तरह होता है कि पहला गीत मेरी फरमाइश का आप सबके लिए है।

भाई अपने अंदाज में हम इतना तो कह सकते हैं कि गर्मी बहुत है और अगर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो फिलहाल तो कहीं ना जाएं आप, और अगर कहीं नहीं भी जा रहे हैं तो भी FM गोल्ड 100.1 आपके साथ है। मनभावन प्रोग्राम है जी, आपकी पसंद का प्रोग्राम है, आप अपनी पसंद अपनों तक पहुँचाते हैं। कुछ ख़ास दिन आज है तो भी हमें मैसेज कीजिए, किसी से नाराज़ हैं तो भी हमें बताइए, हम कोई गीत उनके लिए आपकी तरफ से बजा देंगे जी, यहाँ प्ले कर देंगे और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो उस गीत के माध्यम से उन तक पहुँच जाएंगी। बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं इंसान के, बहुत सारे मूड होते हैं। अब आप जिस भी मूड में हैं, बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, fmgoldaiadelhi@gmail.com। और जी यहाँ शुरू होते हैं हमारी जो फरमाइशें आई हैं उनकी शुरुआत करते हैं। गंज टंडवारा से शमशुल कमर राही हैं, शाहीन फातिमा हैं, अदनान खान हैं और अनु खान हैं। ये तो हमने जी पहला

संदेशा पढ़ दिया और अब दूसरे संदेशे की बारी है. जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से ये मास्टर अशोक वर्मा है, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा है, शेख मूसा भाईजान है, भाई राजकुमार है और सुदामा नगर खंडवा से ये कौन है जी, लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप जी हैं. तो ये हमने नाम पढ़े, हम ऐसे ही एक एक करके नाम हम पढ़ रहे हैं. आप बस सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ किस तरह से दे सकते हैं, आपको हमें अपने संदेशे भेजने हैं. और अशोक वर्मा जी, अशोक कुमार जी बहुत सारे संदेशे एक के बाद एक आप भेज रहे हैं, इसमें जो असल में हम तक पहुंचना चाहते हैं वो फिर नहीं पहुंचेंगे, इसीलिए थोड़ा सा आप थोड़ा ख्याल कीजिए इस बात का. यहाँ पर मैसेज आया है, नमस्कार सीमा जी, आज कल ऑफिस में हमारी नाइट शिफ्ट चल रही है लेकिन आपके कार्यक्रम से बेशुमार मोहब्बत है, इसीलिए जाके हुए हैं. चलिए हमारा प्रोग्राम सुनने के बाद सो जाइएगा. आपने पहाड़गंज से हमें संदेशा भेजा है, मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन है, उषा मोहन है और टिल्लू नायक हैं. यहाँ पर जब मैं फुर्सत में बैठी थी थोड़ी देर पहले तो मैंने कुछ आपके नाम यहाँ लिख के रखे हैं, यानी कुछ संदेशे मैं पढ़ ही रही थी. तो यहाँ मुरादाबाद से मुकेश, शीतल कश्यप हैं, सोनू हैं, सुरेश हैं और राजपाल पंकज हैं, मानवी और तानवी हैं और लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जी हैं. ये भी एक संदेशा है, मुझे लग रहा है संदेशे बहुत सारे हो गए. अब बारी है आप की पसंद के गीत की, तो किसी एक की पसंद का गीत आपकी नजर हम अब करते हैं. लीजिए सुनिए.

0: दिल के इस सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग,
2: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज।
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी,

0: हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
1: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
2: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
1: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
2: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
1: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
1: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
2: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
1: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
2: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
1: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
2: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
1: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
2: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
1: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
2: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
1: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
2: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों फड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूट जाएंगी।
4: लताएं भी रूटती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूटती भी हैं और प्रसन्न भी होती हैं, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते।

0: अरे अनुसुईया, ओह जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांध दी है इस प्रियंवदा ने।
1: ए मुझे क्यों दोष दे रही है?
0: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
1: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
2: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
0: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
1: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
0: परिहास ना कर।
1: अच्छा नहीं करती, बता।
0: देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई। नहीं
1: तेरी तरह
0: फिर परिहास।
1: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
0: हाँ बता।
1: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
0: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
1: सच? मैंने अपने कानों से सुना है।
0: अच्छा,
1: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
3: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
0: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
4: ओह अरे ये भौरा कहां से आ गया?
0: अरे ओह अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। ओह अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग। अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
1: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
3: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
1: हाँ वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
0: अरे बचाओ, बचाओ ना।
2: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
5: पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
1: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
3: आपके आते ही भाग भी गया।
1: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजी ना।
3: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
5: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
1: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
3: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
5: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
0: ना तुम लोग बैठो, मैं भी।
1: अब बैठ भी जा।
0: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
1: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
3: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
5: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ, पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
1: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
5: और ही ढंग से?
3: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
0: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
5: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
3: बहुत मीठा है इसका गला,
1: करती रहती है सबका भला,
3: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
1: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
3: कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है।
5: किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
1: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
5: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
3: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
5: फिर
3: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
5: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
1: किंतु क्या आर्य?
5: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना।

0: बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
1: ये तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य। पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
2: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
1: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
3: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
0: वृक्षों को सींचने का ऋण?
1: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
3: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
0: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
1: आप
0: ये लीजिए
1: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
3: आपके पास ये अंगूठी?
0: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
1: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
3: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
0: मैं आभारी हूँ।
4: सावधान, सावधान, सावधान। तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं। सावधान, सावधान।
0: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
1: हे भगवान, अब क्या होगा?

0: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
1: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
2: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
1: चलो शकुंतला, चलो
2: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं। किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा
0: है। भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूँ माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूँ।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: है? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य,

0: चंद्रमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
1: विशेष बात?
0: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
1: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
0: उसकी भी एक कथा है माधवे।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
0: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
0: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
0: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
0: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
2: आज्ञा महाराज।
0: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूँ।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
0: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
0: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: माता का संदेश।
1: महाराज की जय हो।
0: क्या आदेश है माता का?
1: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
0: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
0: एक काम हो सकता है माधव्य।
4: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
0: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
4: मैं तुम्हारे स्थान पर?
0: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां के व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
4: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
0: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहाँ तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
4: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
0: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
4: कहिए महाराज।
0: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
4: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
0: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
4: जो आज्ञा महाराज।
0: जाओ युवराज।

0: आह, कितनी प्यारी पवन चल रही है। अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: आह, क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: ए, इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार

0: उपचार नहीं।
1: उपचार है क्यों नहीं? तुम बताओ तो, इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
0: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
2: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
1: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
0: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं तभी से।
1: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
0: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
2: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
1: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
0: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
2: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
1: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
2: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
1: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
2: वो कैसे?
1: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
2: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
1: मुझे एक उपाय सूझा है।
2: क्या?
1: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं।
2: फिर
1: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
2: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
1: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
0: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
2: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
0: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
2: क्या शकुंतला?
0: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
2: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
1: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
0: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं

0: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हाँ, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था, जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
0: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
1: जरूर,
0: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो मंचीय प्रस्तुति?
1: अन्ना जी के सिवाय, वसंत देसाई के सिवाय।
0: अच्छा,
1: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया।
0: अच्छा,
1: मैंने
0: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
1: अन्ना जी के गानों का शो करता भुला है ना बने करके,
0: जी जी,
1: उनका उसका नाम था।
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम शो करते थे षण्मुखरण में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
0: जी।
1: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
0: जी, जी, जी।
1: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके घर में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं, वो ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं, तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
0: अन्ना जी मतलब श्री
1: रामचंद्र जी,
0: जी।
1: तो षण्मुखन में शो था।
0: हाँ।
1: और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
0: अच्छा।
1: तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठे।
0: अच्छा।
1: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
0: हाँ,
1: नाम नहीं बताऊंगी। तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
0: जी, जी,
1: वो पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एम वी में।
0: अच्छा।
1: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
0: Okay.
1: एक समय काली पास सुर है, तो खर्च के जो सुर होते हैं, आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी, क्योंकि तब तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल?
0: हाँ।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
0: जी जी,
1: ये दोनों में फर्क था, संजी और अन्ना जी।
0: अन्ना जी को, यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें, तो इतनी सारी कंपोजिशंस है,
1: बहुत,
0: उसमें
1: बहुत।
0: से कौन सा कंपोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ। तो समझ में आता है
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ, लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ हमारा, तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से, तो उन्होंने मुझे ये कहता

0: जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का, अच्छा। और कुछ करने का नहीं। मतलब अच्छा वो आप आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड। वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
1: अच्छा अच्छा, आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
0: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हर तरह का गाना उनको। वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
1: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
0: नैयर साहब का।
1: क्या बात क्या बात,
0: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत।
1: ये गाना सुन लिया।

0: निर्मला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें, ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ.
1: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उनके मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला हम वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे,
0: अच्छा,
1: उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ,
1: तो बस तो उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंसूर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे,
0: हाँ,
1: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा कटआउट बनाया था,
0: हाँ, हाँ,
1: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी।
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादे, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वो ही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
0: हाँ,
1: मंसूर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: है, रहा
1: है, ऐसा
0: अच्छा,
1: लगता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा।
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होके आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ,
1: मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आप अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ,
0: अच्छा,
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा,
0: क्या बात,
1: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, हाँ, ऐसा गाना गा, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज
1: हाँ
0: किए हैं और विदेशों में भी किए हैं
1: जी,
0: हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं, हाँ, लेकिन अनुभव से,
0: हाँ,
1: आपको मालूम होना चाहिए,
0: हाँ,
1: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं
0: जी, जी,
1: एक साथ लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सामने ये करते हैं,
0: अच्छा, अच्छा,
1: फिर दो गाने के बाद ये कोडा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात,
0: अच्छा, अच्छा।
1: और जहाँ तक पहली बार भी गए,
0: हाँ,
1: किसी शहर में किसी, हाँ, गांव में छोटे से गांव में भी
0: जी, जी।
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा,
1: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
1: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे,
0: अच्छा,
1: ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं, तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे, पहला प्रमिला भी अच्छा गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: रफी साहब का गाना एक दुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको,
0: हाँ,
1: रफी साहब पहले शुरू करते थे
0: जी।

0: गया फिर जानी विस्की और परसों भी रहेगा और तरसों क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है,
1: जी जी
0: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
1: हाँ
0: ये होता है,
1: हाँ हाँ
0: ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर,
1: जी जी
0: इसलिए वो अगर होता था, लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
1: हाँ
0: मैं लोगों को आमने सामने मेरा जब मुझे ये दाद मिलती थी लोगों
1: जी
0: की,
1: जी
0: तो मैं खुश थी, वही वो उसमें ही खुश थी
1: जी जी जी
0: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
1: जी
0: से बहुत
1: जी
0: अच्छा चला
1: बिल्कुल
0: और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया
1: हाँ
0: कि ऐसा
1: हाँ
0: होना चाहिए
1: हाँ
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: जी।
0: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो
1: जी
0: तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
1: हाँ
0: उन्होंने मोरार्ची को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो
1: हाँ
0: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
1: क्या
0: बहुत
1: बात है,
0: अच्छी
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: दूसरा कोई कहने की
1: हाँ
0: ज़रूरत ही
1: बिल्कुल
0: नहीं है।
1: बिल्कुल, शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो
0: प्रेजेंटेशन शालीनता हो
1: तो
0: ज़रूर,
1: सवाल ही नहीं, वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ऑर्केस्ट्रा बहुत सुंदर होता है। क्या
0: बिल्कुल।
1: बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
0: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
1: हाँ
0: ज़्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
1: प्राइवेट शोज भी होते हैं कई
0: प्राइवेट
1: बार
0: शोज़ भी
1: जी, कंपनी के लिए
0: होते
1: या
0: थे
1: किसी।
0: कंपनी के लिए, किसी
1: हाँ
0: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
1: अच्छा
0: मतलब बहुत सारी टाटा इंडस्ट्रियल, आप मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
1: जी।
0: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी,
1: अच्छा
0: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट
1: जी
0: किया
1: जी जी
0: मुझे।
1: प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए
0: हाँ
1: हैं,
0: जी
1: सबका अपना अलग अंदाज होता
0: हाँ
1: है, अपना स्टाइल
0: जी
1: होता है।
0: एकदम
1: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज़्यादा आनंद आया, मज़ा आया, सबका
0: समझ,
1: गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
0: सही
1: उनकी
0: बात सही बात।
1: विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने ज़माने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
0: हाँ जी
1: शमशाद
0: हाँ जी
1: बेगम जी के
0: हाँ
1: प्रस्तुत,
0: जी हाँ
1: वो जो एक वहाँ से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
0: यूँ
1: किन
0: कहूँगी
1: कंपोजिशंस में
0: कि
1: ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
0: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि
1: जी जी
0: पुराने ज़माने के जो कंपोजिशंस थे
1: जी
0: वो चैलेंजिंग थे।
1: अच्छा
0: हाँ अभी
1: अच्छा
0: आज का ज़माने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के ज़माने के, ऐसा मुझे लगता है,
1: अच्छा
0: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन पुराने जो गाने थे
1: हाँ
0: उसमें अगर जो म्यूज़िक भी था
1: हाँ
0: बीच का,
1: जी
0: वो म्यूज़िक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूज़िक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
1: जी
0: इस
1: जी
0: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये,
1: हाँ समझ में आता
0: ऐसा चिल्लाते थे
1: है
0: जरा
1: जी
0: भी।
1: जी
0: मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ,
1: जी
0: मेरा
1: जी
0: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक हैं,
1: हाँ हाँ
0: उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी,
1: अच्छा
0: तो वो सेमी क्लासिकल रफ़ी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाने,
1: जी जी
0: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और उसमें सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
1: अच्छा
0: हाँ तो नंदुरवार करके गांव है छोटा
1: जी
0: सा धुलिया के पास,
1: जी
0: तो वहाँ पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया।
1: हाँ
0: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
1: हाँ
0: क्लासिकल का ज्ञान
1: हाँ
0: था,
1: हाँ
0: तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो
1: ओ
0: तो रफ़ी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो तो, लेकिन रफ़ी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
1: हाँ
0: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए हैं
1: जी
0: मुकरी,
1: जी
0: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा है,
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए,
1: तो श्रोताओं के
0: वे
1: समझ में आ
0: पुराने जो
1: जाता है।
0: गाने
1: जी जी
0: बराबर उनको ए
1: बिल्कुल
0: करके चिल्ला देते वहां
1: हाँ
0: से।
1: हाँ क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार
0: हाँ
1: सुना है
0: वो
1: तो
0: उनके
1: उन्हें
0: दिमाग
1: वैसा का
0: में
1: वैसा वो सुनना
0: वैसा के
1: चाहते
0: वैसा,
1: हैं।
0: अभी ये
1: जी
0: गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है टरा टरा
1: हाँ
0: टरा, वो
1: हाँ
0: आना ही चाहिए ऊपर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना
1: जी
0: म्यूजिक
1: जी जी
0: चिपक
1: जी
0: के चलता था
1: जी
0: शब्दों
1: जी ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं,
0: जी।
1: उनकी नज़र से एक
0: हाँ
1: सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
0: मिलता
1: में,
0: नहीं है, सही बात
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके
0: बजा करते।
1: अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल,
1: हाँ
0: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जैसे

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन

0: तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से. इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे वही. और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए. नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का. तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था सालों साल तक. अभी मैंने 2023 को एक शो किया. बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से. तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें. तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को शो किया. तो एक तो बहुत सारी चीजें नई थी मेरे लिए. म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूँगी लेकिन एक काल के हिसाब से एकदम से तो बदली हो जाएगा
1: जी.
0: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: बस दूसरी रिहर्सल नहीं. हाँ, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो
1: बात.
0: तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
1: जी.
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी.
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है. तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है. तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल. तो एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको, शो को.
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मांडके बोलूंगी, विनय मांडके.
1: विनय
0: मांडके
1: जी जी. मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मांडके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी, जी.
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे. बहुत सारे जिंगल गाए उसने. और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्मर होता है वो था. बहुत सारे हल्के बुल्के बातें भी करने का बीच में. मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था. फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट डेट, तो उसमें कोरस था. तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के. तो ये कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा. फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया. मजा
1: बहुत अच्छे.
0: फिर एक गाना था अन्ना जी का, भोली सूरत दिल के खोटे. नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी. फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली. कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली. कुछ भी मतलब वो ठीक था. लोगों को भी मजा आया,
1: मस्ती के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा रहते थे.

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब था, अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं, कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल, हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए, पड़वा के शो में वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए, वो बड़ा शो हुआ करता था। और तो मैं किसी को बुलाती थी
1: जी,
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, हाँ। प्रभु कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो बाहर गाँव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: आई। फिर मुझे उन्होंने पूछती है कि कसे भाव तुम्हें अच्छे प्रोग्राम करता है, उड़े प्रवास कराएगा, पर गायला उभर आयो कस करता, मतलब नहीं अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था, मालूम था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए हैं,
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियाँ आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ा ला पिकला अम्बा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना बहुत जरूरी होता,
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: मसला बघून तुम्ही जाना हो पाऊन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाऊन, हो पाऊन

0: Opauna, pauna, pauna zara thamba, oh, pauna zara thamba, arghe padala piklai amba, alavai padala piklai am, onitvag padala piklai amba. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पाड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अम्बा बोलेंगे
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से फिर जोर से एकदम जोर जोर लगा के अम्बा आता था सामने से मजा आता था उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया
1: वाह वाह
0: उनको भी शायद
1: प्रमिला जी आपकी बातों

0: हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
1: थी। हाँ।
0: और अपने लिस्ट में
1: कनाडा गाना सुना सुनाती हूँ।
0: जी जी जरूर,
1: मेरी लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ,

0: ये गाना बहुत दरे था। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट हाँ, हाँ। वो पहन वाला बैठे थे तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाँव ऊपर और सर बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाँव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर लो गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ। तो मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई, हाँ जी, लिस्ट बनाई होगी, हाँ जी, है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: और तब की जो उस प्रोग्राम उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें।
1: अच्छा?
0: जो लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा?
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ?
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे।
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए। लेकिन एक अवारी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, फिर पाड़ाला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा आया आपकी बातों में और आपके अनुभव सुनकर के।
0: हाँ जी
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंत?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, रूपर वाले का ये कर्म है कि आज आप यहाँ पधारे और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका। आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिस तरह आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। यह उस रात की बात है जब शोक हवा एक खूबसूरत फूल के पास ठिठक गई। अब हवा के मन की लहर का क्या कहें। कुछ देर ठहरी, अपने झोंकों में फूल की खुशबू समेट आगे चल दी, लेकिन फूल के ठहरे मन में तो हलचल मचा गई।

इटलाती बलखाती हवा चलते चलते एक जर्रे के पास आई, जो खुद में सिमटा न जाने किन ख्यालों में गुम था। हवा ने उसे शरारत से देखा और अपने एक झोंके की गांठ खोल दी। फिर क्या था, फूल की खुशबू ने जर्रे को चारों ओर से घेर लिया।

क्या बताएं, वो हवा की छेड़छाड़ थी या खुशबू का असर। खोया खोया वो जर्रा अचानक बेचैन हो गया और पूछने लगा,

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत के सुरीले सफर में कुछ और नगमे होंगे इस अंतराल के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। कुछ एहसास इतने खास होते हैं कि साथ ना होकर भी हमेशा पास रहते हैं। खुशबू के उस झोंके से जरा तो महक गया, जो कहना चाहता था वो हवा से कहलाया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा।

संदेश मिला जर्रे का, उसका रंग कुछ और निखर गया, मगर चाहकर भी न मिल पाने की बंदिश थी सामने। फूल को बेहद मायूसी हुई, मुरझाने का वक्त करीब था। फूल ने अपनी तमाम खुशबू हवा को सौंपी और जर्रे को संदेश भिजवा दिया।

जरा झूम उठा जब जानी पहचानी प्यारी सी खुशबू ने उसे एक बार फिर घेर लिया। मगर जब हवा ने फूल का पैगाम सुनाया तो एक आग सी उठी जर्रे के सीने में। अपनी बेकसी पर वो तड़प उठा, काश वो भी फूल के इर्द गिर्द होता, कुछ पल तो साथ होते, वो कितना अच्छा होता अगर यूं होता।

0: छाया गीत के सुरीले सफर में आज बस इतना ही।
1: श्रोता बन्धु यति बेर चाहिँ सुन्नुथिले कार्यक्रम रिले गरी प्रचार गर्नु आकाशवाणी विविध भारती मुम्बई केन्द्रहरु। आकाशवाणी पुरी वर्तमान प्रचार गर्छु, किछि क्षण मात्रै शुणिबे युवावाणीर प्रयास कार्यक्रम।
2: आम राजा बाबूंकर जेत्ते बेले देखिबो घरे एसी फ्यान सबु चलिथिबो।
3: ओहो मा, तमार प्रति कथारे टेंशन।
2: इलेक्ट्रिक बिल केते आसुछ जानिछु?
3: देखो मा, घरे सोलार लगे देले चिंता जिबो।
2: हां, सेटा जेमति मागणरे हे जिबो।
3: जानिना कि सरकार पर एति पे सबसिडी देउछंती?
4: आज्ञा हां, पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। पीएम सूर्य घर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
1: आकाशवाणी पुरी प्रचार करछु युवावाणी रो प्रयास कार्यक्रम। कार्यक्रम टिको उपस्थापन करिछंती सिप्रा मिश्र, कर्णप्रभा सडंगी, प्रयोजन करिछंती दिलीप कुमार नायक। सुनंतु युवावाणी रो प्रयास कार्यक्रम।

0: শ্রোতাবন্ধু শুণুলে যুববাণীর প্রয়াস কার্যক্রম পরবর্তী কার্যক্রম শুণত আকাশবাণী দিল্লি কিছুক্ষণ মধ্যে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিশাল শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सी ओ

0: कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोता बंधु सुनिले संवाद आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र आकाशवाणी पूरी वर्तमान शुणु कार्यक्रम सूचना परे परे शुणिबे प्रथमे आसंता कालीर कार्यक्रम सूचना कहबो किछि खण मध्यरे प्रथमे शुणन्तु आजर कार्यक्रम सूचनार किछि आज सन्ध्या 6:10 प्रचार करबो ओडियारे भक्ति गीत सन्ध्या 6:15 शुणिपारिबे देशात्मक बोधक संगीत ओडिया आलबम गीतर कार्यक्रम प्रचार करबो सन्ध्या 6:20 सन्ध्या 7:00 शुणिपारिबे ओडिया कथाचित्र गीतर कार्यक्रम बनानी कार्यक्रम प्रचार कर आकाशवाणी कटक केन्द्र संध्या 7:30 राति 8 प्रचार कर बाटेघाटे कार्यक्रम पुनः प्रसारण हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम शुणिपारे राति 8:15 राति 9:30 शुणिपारे निरामय कार्यक्रम पुनः प्रसारण राति 10:00 प्रचार करबो विभिन्न शिल्पीक कंठरे गीत गजलर कार्यक्रम राति 10:30 शुणिपारे श्री जगन्नाथ भजन कार्यक्रम श्रोताबंधु शुणिले चलित अधिवेशन कार्यसूची

केशव चंद्र साहूंक कंठरे शुणिले भक्तिर कीर्ति राजेन्द्र किशोर हरिचंदन गीत रचनार आकाशवाणी पूरी बर्तमान शुणु देशात्मक बोधक संगीत सुभाष दास सोसाथी कंठरे जगन्नाथ पंडा गीत रचनार।

0: करिबा निमित्ते खोर्धा रोड रेलमंडल पक्षर विभिन्न सचेतनता एवं परिवेश सुरक्षा कार्यक्रम रूपरेख प्रस्तुत करा जाय छि। अभियान अवधि मध्य समग्र रेलमंडल व्यापक चारारोपण कार्यक्रम करा प्लास्टिक बर्ज्यवस्तुर सुपरिचालना पृथकीकरण विषय कर्मचारी सचेतन करने सहित स्टेशन परिसर में स्वच्छता अभियान उपर मध्य विशेष गुरुत्वारोप खोर्धा रेलमंडल पक्षर क देवगढ़ जिला संस्कृति भवन में ओडिशा साहित्य एकाडेमी और श्रीजगन्नाथ साहित्य संसद मिलित आनुकूल्य बामंडर राजा सार वासुदेव सुढ़ोलदेव जयंती उपलक्षे आलोचना चक्र और कविता पाठ उत्सव आज अनुष्ठित ओडिया भाषा साहित्यर पुष्टि साधन में राजा सुढ़ोलदेव भूमिका विशेष गुरुत्वपूर्ण थी कार्यक्रम अतिथि मतव्यक्त करते राजा सुढ़ोलदेव को केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान श्रद्धाजलि ज्ञापन कर सामाजिक गणमाध्यम श्री प्रधान कहते बामंडा राजा स्वर्गत सुढ़ोलदेव स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन अन्यतम कर्णधार थिले। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय पक्षर दिव्यांगजन सशक्तिकरण जातीय पुरस्कार आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। ऑनलाइन जरिया रे आवेदन पत्र गुड़िक दाखल करा जाय परिबो www.awards.gov.in माध्यमरे असंता जुलाई मास शेष सुधा चलित बर्षर जातीय पुरस्कार पाई समस्त आवेदन को विचार को नियाजे बोली मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। गंजाम जिला छत्रपुर रो आराध्य देवी माँ रामायणम्मा ठाकुराणी यात्रा 13 दिन में पहुंची संध्या आलती समय बहुसंख्यार महिला श्रद्धालु माने माँ को दर्शन करुछंती। शेष सप्ताह में छत्रपुर महोत्सव आयोजन करा जियो बोली यात्रा कमिटी पक्षर कहा जाय छि। आंचलिक संवाद शेष होगा पूर्व मुख्य संवाद पुणे राज्यर अर्थनैतिक विकास में ओडिशा खणि निगम अतुलनीय अवदान रही कहले मुख्यमंत्री 2036 मसीहा सुधा 100 टन खनिज उत्तोलन करने लक्ष्य रखी ओएमसी। डाक्तरी प्रवेशिका परीक्षार प्रश्नपत्र प्रघट मामलें पुणेर जड़े अध्यापिका गिरफ्त कला सीबीआई। तैय संकट को दृष्टि रखी गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्ष मार्गदर्शिका जारी एवं एकाठी हो काम करने डेंगू रोग को दूर करने वार्ता नहीं आज पालित होइछि डेंगू दिवस। आंचलिक संवाद प्रसारण आज एतिक शेष होगा।
1: कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र
2: आज प्रसंग मिलमिशी कम करवा डेंगू दूर करवा आलेख्य आंचलिक संवाद विभाग उपस्थापना महेन्द्र कुमार माछी। डेंगू रोगर कारण एवं यार निराकरण संपर्क में जनसचेतनता सृष्टि करने लक्ष्य नहीं आज जातीय डेंगू दिवस पालन करा। आमे सम्मुखीन होता स्वास्थ्य समस्या गुड़िक मध्य डेंगू अन्यतम प्रारंभर डेंगूर चिकित्सा करा नगले परवर्ती समय यह गुरुतर आकार धारण करने मनीष अकाल मृत्यु मुखरे पड़ता है। जनसाधारण को यह विषय सचेतन करने लक्ष्य नहीं प्रत्येक वर्ष मे मस 16 तारीख में देश में जातीय डेंगू दिवस पालन करें। डेंगू को जदि अवहेलाए तेब तहार परिणाम भयंकर होवार नजीर रही। चलित वर्ष डेंगू दिवस विषय वस्तु रही मिलमिशी काम करवा डेंगू दूर करवा डेंगू रोगर लक्षण एवं चिकित्सा संपर्क में आम अवगत होगा नितांत जरूरी। बर्षा दिने डेंगू रोगर प्रादुर्भाव अधिक देखा मिलता है। डेंगू रोगर बाहक एडिस मशा सतसंतिया तथा अपरिष्कार स्थान में निजर वंश विस्तार करें। डेंगू एक मारात्मक रोग दुई सप्ताह अधिक दिन धरी ज्वर लग रही डेंगू परीक्षा करवा उचित। सकाळ किंबा संध्या समय मुख्यतः एडिस मशा कामुड़ी थाए। एही रोगर लक्षण हेउछि अधिक दिन ज्वर सह गंठी बिंधा एवं आखिरे मध्य जंत्रणा होइथाय। डेंगू रोग को प्रतिहत करिबा पई सरकारक तरफ विभिन्न कार्यक्रम मान हाथ को निया जाइछि। डेंगू एवं चिकनगुनिया रोगर लक्षण प्राय समान रहुथिबारु यहार चिन्हट पई केतक परीक्षा करिबाकु पड़िथाय। जनस्वास्थ्य मिशन अधीन रे एही सब रोगर निराकरण पई केन्द्र सरकार बजेट सहायता मध्य प्रदान करिथान्ते। प्रारंभिक पर्यायर यह चिह्नट करिबा एवं प्रतिषेधक व्यवस्था को ठीक भाव कार्यकारी करागले डेंगू रोग को प्रतिहत करा जाई पारिबो। डेंगू भली रोग को प्रतिहत करने को हेले आमको सचेतन हेबाकु पड़िबो। परिवेश को परिष्कार रखिबा सह घर परिसर मध्यरे किंबा आखपाखरे जमी रहुतबा पानी को निष्कासन व्यवस्था करा जिबा उचित।

0: नमस्कार श्रोता बंधु आपण मानको आजिर बनानी कार्यक्रम को सबुज स्वागत श्रोता बंधु जंगल भितरे निरीह जीव को सुरक्षा देबा को आगे आस तांका उजुड़ा बास को सजाड़ीबा पाई प्रत्येक लोक कर प्रयास
1: हाँ श्रोता बंधु वन्य प्राणी माने हेउछन्दी जंगलर अंग सेमाने जंगलर सौंदर्य वृद्धि करिबा सहित परिवेश को संतुलित अवस्था रे रखी थांती
0: मनुष्य और वन्य प्राणी परस्पर रा परिपूरक तेणु वन्य प्राणी का सुरक्षा निमित्त समस्त कार्य करिबा सचेतनता सृष्टि करिबा सहित सेमानक संरक्षण प्रति यत्नवान हेबा उचित
1: काहेकि ना वन्य प्राणी न रहिले खाद्य श्रृंखल रे व्याघात घटिबो आ प्रकृति तार भारसाम्य

0: कटाई बसिबो वन्य प्राणी का सुरक्षा को नजर रखी वन्य प्राणी सुरक्षा आइन 1972 प्रणयन हेतिला एही आइन द्वारा शिकारी तथा वन्य प्राणी को क्षति पहुचौथिबा दोषी को कठोर दंड रे दंडित करिवार व्यवस्था रहिछि
1: एते सब सत्वे वन्य प्राणी मानंकर क्षय क्षति हे चलिछि तेनु प्रत्येक जदि जीवे दया मनोभाव पोषण करी सेमानंकर सुरक्षा संरक्षण प्रति सजग हेबे ताहले निश्चय ए क्षय क्षतिर अंत घटिबो
0: विलुप्त हे जाउथबा वन्य प्राणी मानंकर संरक्षणर आवश्यकता को उपलब्धि करी सरकार विभिन्न योजना तथा प्रकल्पर परिकल्पना करुछंती
1: केवल सरकार वन विभाग चाहिले ए समस्यार समाधान हे परिबनी एथिपई जनसाधारणंकर सहाय्य सहयोग अपरिहार्य
0: वन्य प्राणीकर सुरक्षा हेले जंगलर विकास हेबा सहित सरकारंकर अर्थनीतिरे मध्य उन्नति साधित हेबो
1: हेले वन्य प्राणी मानंकर किपरि केउ भली भाबरे सुरक्षा हे परिबो तांकर परिचालना किपरि सुचारु रूपे करा जाई परिबो एही सब प्रसंग को आधार करी आज बनानी कार्यक्रम रे रहिछि एक विशेष
0: आलोचनार विषय हेउछि वन्य प्राणी का सुरक्षा ओ परिचालना ए संपर्क रे आलोचना करबा पय आम सहित अछंती डंपडा वन्य प्राणी वनांचल अधिकारी निरंजन महापात्र
1: तांक सहित आलोचना रे अंश ग्रहण करूछंती निहारबाला पटनायक
2: सर नमस्कार आपनको स्वागत करूछु हमर बनानी कार्यक्रम को
3: नमस्कार मैडम
2: तले प्रथमे कोंतु वन्य जंतुंका सुरक्षा ओ परिचालना कहले साधारण भाबे गोटे साधारण लोक कोन बुझिबो
3: गोटे इकोसिस्टम भितरे प्रत्येकटी जीवजंतुकर बंचिबार गोटे अधिकार अछि सेमाने जदियो मुह कोली कि समाज को कोनोसी सीधासळक वार्ता नदे परंती तथापि तांकर भावना को बुझिकि तांकर चालीचलन को बुझिकि तांकर हावा को परीक्षण को निरीक्षण करिकि ताको सुरक्षा प्रदान करिबा होचि वन विभागर कर्तव्य
2: आज्ञा
3: जो प्रश्न उठुछि जे काहि कि आमे तांको सुरक्षा प्रदान करिबा जेंति मानव जगत रे बंचिबार मानव प्रति गोटे अधिकार अछि ठीक सेंति वन्य प्राणी जगत रे वन्य प्राणी मानकर मध्ये बंचिबार गोटे अधिकार अछि तांको अधिकार को सब्यस्त करिया पई ओडिसा राज्य सरकार को गोटे वन प्रशासन अछि
2: वन्य प्राणी को सुरक्षा हम परिवेश उपर किछि प्रभाव पकै थै कि
3: निश्चित रूपे तार बहुत बड़ प्रभाव अछि जदि आपण वन्य प्राणी को सुरक्षा न करछंती सब जीवर सुरक्षा न करछंती सोसाइटी रे डिटोरिएशन आसीबो हम अपन गोटे छोटी एग्जांपल दउछि आपण आजका डेट रे देखुथिए प्रत्येकटी परिवार रे गोटे आमी एसी व्यवहार करछे तार कारण हला गोटे उच्च वायुमंडल तापमात्रा वृद्धि घटुची जेतबेले आमे आमो चाइल्डहुड एज रे थिले सेठी आपण लक्ष्य करथिए टेंपरेचर हाइडली 33-34 डिग्री सेल्सियस रहउतला आजिका डेट रे सेटा ऑलरेडी 42 प्लस आसुची रीजन होची ग्रीन कवरेज टा दिनकु दिन कमुची विश्व तापमात्राटा बढुची काहेकि ना जेतबेले बर्फाभूत अंचल गुडीक तरळी जाउची सेतबेले आपणकर तापमात्रा विश्व तापमात्राटा वृद्धि पाउची विश्व तापमात्रा वृद्धि पाया जको जो वन्य प्राणी मानकर जेतिकि टेंपरेचर रे बॉडी एडजस्ट करिकि परिवेश सहित चलबा कथा सेमानकर मध्य धीरे धीरे डिटोरिएशन होची बा सेमाने धीरे धीरे विलुप्त प्राय होसंदी 1999 मसिया बात्या रे ता पूर्वरु प्रत्येकटी गा गंडा रे जेतबेले गोटे शव सत्कार कार्यक्रम हो किबा गाय मोइसादी परि होतले हम नेक गोटे शव जोटी पड़े त गा गळे हम मसाणी बोली को सेठी कुडो कुडो सागुणा थिले आपण देखिबे सागुणार वंश विलुप्त प्राय एबे ओडिसा राज्य सरकार बहुत बड़ प्रचेषा करिकि धीरे धीरे सागुणा प्रजनन केन्द्र गोटे नंदनकानन सृष्टि करछंती जदि सक्सेस हुए समस्त एक्सपेरिमेंट देन डेफिनेटली हम धीरे धीरे अगेन सागुणा प्रजनन टाको इम्प्रूव करिकि सागुणा को संख्या वृद्धि करि परिबा
2: आपण कहिले जे सबुजिमा धीरे धीरे कमीबार लागि छि जहा कि हम परिवेश उपरे प्रभाव पकउ छि ए सबुजिमा कमीबार कारण कोन
3: देखंतु सबुजिमा कमीय पछर बहुत गुडे कारण अछि जतले भारत गोटे विकासमुखी देश नथिला वर्तमान विकास मनुष्य जगत सदा चाहे मोर समस्त जिनमल्टेनसी दरकार मत सबुजीमा दरकार मत जल प्रोवाइड करिया दरकार मत विद्युत शक्ति प्रोवाइड करिया दरकार मानव जगत वांटिंग्स टाक फुलफिल करने केन्द्र सरकार विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यक्रम हूँ राज्य सरकार विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यक्रम जो फिल्ड में इंपैक्ट दिखती इफेक्ट दिखती आपंकर सबुजीमा तार प्रभाव सीधा सड़क भाव में पड़े और सबुजीमा धीरे धीरे डिटोरिएशन हुए तेणु से सबुजीमा डिटोरिएशन हवा द्वारा वन्य प्राणी का आवास स्थल धीरे धीरे
2: डिटोरिएट
3: नष्ट हवा जो तार प्रभाव में अवक्षय घटू
2: तामने आमे भी सबुजिमा प्रति नजर रखिबा उचित आ वन्य प्राणी को सुरक्षा प्रति भी सेमती जत्नबान हबा उचित
3: निश्चित रूप रे देखंतु अमर जो आईएफएसआर रिपोर्ट अछि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अछि 2021 रो 23 एवं अप टू

0: सुनीले कार्यक्रम बनानी
1: श्रोताबंधु शुणुले प्रायोजित कार्यक्रम बनानी आकाशवाणी कटक केन्द्र आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी पूरी केन्द्र वर्तमान प्रचार करुचु बाटेघाटे कार्यक्रम पुनः प्रसारण कार्यक्रम उपस्थापना करिसेंती राजश्री साहू प्रयोजना करिसेंती दिलीप कुमार नायक शुणंतु कार्यक्रम बाटेघाटे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।

0: प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां

0: उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपण म्हणजे शुणिच्छंती गीत गजल कार्यक्रम आकाशवाणीपुरी 103.4 फेमरे बर्तमान शुणवा कार्यक्रमर परवर्ती गजलटी जमीर काजमींक गीत रचनार भूपिंदर सिंह संगीत संयोजनाक कंठ सजाई मिताली सिंह।

0: आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described